बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

0: घर तक आ गए और हाय रब्बा वो भी हो गया। अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना, फिर क्या?
1: चुप। दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती। चुप तो नहीं रहा। ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते, मोहब्बत के रिश्ते होते। और एक बात और बता दूं, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।